0: 98.5 2000 FM.
1: क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके? ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें। पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें। NSW पुलिस फोर्स, हमारा काम बहुत मायने रखता है।
2: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर।
3: Radio 2098.5 FM Community Program.
4: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
3: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
4: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार विचार संगीत और सामाजिक सूचनाएं
3: रेडियो 2098.5 FM मल्टीकल्चरल रेडियो
5: आज रविवार युगांत 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 भादो महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी 20 सितंबर 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा कदम। HAL ने वायुसेना को सौंपे तेजस और HTT-40 अंकुर ट्रेनर विमान। ग्लोबल चिप हब बनने की तैयारी में भारत। सेमिकॉन 2 से देशी स्टार्टअप्स को मिलेगा नया मुकाम। राजस्थान में ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रणाली का लाइव टेस्ट। भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना की फुल तैयारी। सिर्फ शराबबंदी से नहीं रुक सकती जहरीली शराब की घटनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों सरकारों को सुझाव कई उपाय। आर्यवीर अन्वय ने दोहराया सहवाग द्रविड़ जैसा प्रदर्शन। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। अब सुनिए समाचार विस्तार से। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को 2 सीट वाला LCA तेजस प्रशिक्षक विमान और HTT-40 बुनियादी प्रशिक्षक विमान सौंपे। साथ ही पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे गए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि 1.27 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन वाली सेमीकंडक्टर योजना सेमिकॉन 2.0 से करीब 200 चिप डिजाइन कंपनियों के उभर कर सामने आने की उम्मीद है। उन्होंने इसे देश के लिए गेम चेंजर बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की डिजाइन क्षमता अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विस्तारित हो रही है। राजस्थान के रेगिस्तान में पहली बार ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का लाइव परीक्षण हुआ। भारतीय वायुसेना का पहला ड्रोनाथन 2026 जैसलमेर स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। 14 से 16 सितंबर तक आयोजित इस 3 दिवसीय ड्रोनाथन का मकसद देश की रक्षा तकनीक को मजबूत करना और भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात की दशकों पुरानी शराबबंदी की व्यवस्था मेथनॉल मिली जहरीली शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। ऐसी कम से कम 10 बड़ी घटनाओं में 600 से अधिक मौतें हुई हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि सिर्फ शराबबंदी से जहरीली शराब की घटनाएं नहीं रुक सकती। शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी घटनाओं रोकने के लिए कई उपाय भी सुझाए। सहवाग ने पहले ओवर में बाउंड्री के साथ अपनी पारी शुरू की और मुकाबले में विकेट कीपिंग की भूमिका भी निभा रहे द्रविड़ ने निचले क्रम में मैच जिताऊ पारी खेली। यह 2002 के एक मैच की कहानी नहीं है, जब भारतीय टीम के दो सितारे वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने टीम को इस तरह से जिताया था, बल्कि 2026 में भारतीय अंडर 19 टीम की दास्तां है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वीरेंद्र सहवाग की भूमिका में उनके बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ की भूमिका में उनके बेटे अनयव द्रविड़ थे। वीरेंद्र सहवाग इस मुकाबले में बेटे को खेलते हुए देख भी रहे थे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,41,710 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95 रुपए 97 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 68 रुपए 32 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
6: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ज पर। आज आपके साथ हैं स्टूडियो में ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम जो ला रहे हैं वो उसके हाइलाइट्स हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे पराग श्रीवास्तव से, जो धार्मिक चर्चा करेंगे आपको, और फिर आपको मिलवाएंगे नंदन मुखारिया से, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग आपको महेश भट्ट जी मूवीज़ के सॉन्ग्स जो हैं उसके लिए सेलिब्रेशन, उनके बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करेंगे, और फिर एक पहेली आपको हम बताएंगे, और इसमें 2 टिकट मिलेगा, ड्रामा के टिकट मिलेंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने के पहले ऋचा जी से आज का विचार।
5: नमस्कार श्रोताओं, आपको पता ही है कि गणेश पूजा हर तरफ मनाई जा रही है, और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज हम एक संकल्प लेते हैं गणेश जी का ही, कि पहले गणेश जी को प्रणाम करें फिर हर काम का शुभारंभ करें, क्योंकि जहां बुद्धि विवेक और सकारात्मक सोच होती है वहां विघ्नों के लिए जगह कम पड़ जाती है। गणपति बप्पा मोरिया।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। सो श्रोताओं, आज हम एक पहेली करेंगे और आपका इस पहेली के टिकट, दो टिकट मिलेंगे आपको। दसो रंग नाइडा में हो रहा है ड्रामा, और उसके बारे में हम आपको और डिटेल्स बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको पहेली के बारे में बता देता हूँ, तो आपको पता रहे कि हमको क्या उत्तर देना है। तो आज की पहेली है, गणेश जी के पसंद की मिठाई कौन सी है? तो ये पहली है। और
2: ये तो बड़ा सरल सवाल आपने पूछ लिया सुनील जी, क्योंकि इतने बढ़िया हम शो का टिकट दे रहे हैं, उस हिसाब से बहुत सरल पहली है। बट चलिए, तो सभी श्रोता मुझे, मेरे ख्याल से इसका आंसर दे सकते हैं।
1: एग्जैक्टली, तो अच्छा है ना कि हमारे पास बहुत सारे उत्तर आएंगे, सही उत्तर आएंगे, तो हमको थोड़ा सा मुश्किल होगा लॉटरी से निकालने के लिए किसको हम दो टिकट दें
2: जी।
1: तो और ये इसका उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं दर्पण फोरम का, तो आप उसमें उत्तर दे सकते हैं। और आपके पास अगर आप व्हाट्सएप फोरम ग्रुप में नहीं हैं, तो आप हमको टेक्स्ट भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 04-68-467-196। तो आज जो है, आप ऋचा आगे का प्रोग्राम आपको बताएगी।
2: मैं ये कहने जा रही थी सुनील जी कि आंसर ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, लोग उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि इतना सरल सवाल आपने पूछा। लेकिन बनता है ये सवाल सुनील जी, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है और हर जगह, पहले तो मुझे भारत में इतनी जानकारी नहीं थी गणेश उत्सव की, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और गणेश पूजा हम रोज़ करते हैं। हमारे लिए कुछ एक ख़ास महीने या कुछ हफ्ते नहीं होते हैं गणेश पूजा के लिए, हमारे घर की हर पूजा का ही शुभारंभ गणेश पूजा से होता है। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि गणेश चतुर्थी की जो है 10 दिन तक पूजा चलती है, और अब मैं सिडनी में देखती हूँ घरों घर जो है गणेश पूजा होती है, उत्सव मनाया जाता है मंदिरों में और पंडालों में। तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है।
1: हाँ,
2: उसी को सेलिब्रेट करते हुए,
1: मतलब उत्तर तो आसान है और लेकिन प्राइज बहुत अच्छा है। तो प्राइज जो है वो है 200 रंग

रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ज्योत्सना ज्योति, और ये होगा नाइडा में, द प्ले हाउस नाइडा, 215 एंजेक परेड केंसिंगटन, और ये होगा 26 सितंबर सैटरडे को 2 से 6 बजे तक, सो आफ्टरनून में 2 बजे से 6 बजे तक।

0: श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने आपको शुरू में बताया था कि आज हमारे दो अतिथि हैं, पहले अतिथि हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। उनका नाम है श्री पराग श्रीवास्तव जी। आपको बता दें कि पराग जी जो हैं बहुत ही धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पराग जी भारत धर्म एकेडमी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। तो धार्मिक चर्चा होगी, और इतने अच्छे मंथ में धार्मिक चर्चा करना तो बनता है। तो पराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण स्टूडियो में, और नमस्कार, धन्यवाद आने के लिए।
1: धन्यवाद ऋचा जी एंड सुनील जी। होम गणेशाय नमः, जय माँ काली एंड जय श्री चित्रगुप्ताय नमः।
0: बहुत अच्छी बात, शुरुआत में आपने इतना बढ़िया जयकारा लगाया। तो सबसे पहले श्रोताओं को आपसे मिलाते हैं, और आप अपने बारे में बताइए कि जो है आप भारत में कहाँ से हैं, कितने समय से आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, और हाँ थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी, तो मेरा नाम पराग श्रीवास्तव है, और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैं 2005 से लेकर 2017 तक जो है दुबई में रहा, फिर दुबई से 2018 में माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न बना हूँ। और मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ, और मेरे जो कुलदेवता हैं वो श्री चित्रगुप्त भगवान हैं, और मेरी जो कुलदेवी हैं वो जो हैं हमारी शीला माता देवी हैं आमेर की, और जो मेरी इष्ट देवी हैं वो श्री जय माता काली हैं।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी बात आपने बताई। तो पराग जी, कैसे आप, शुरू से ही आपका ये इंटरेस्ट था धर्म में, या जो है बाद में जुड़ाव हुआ आपका, धार्मिक रुझान कब से हुआ?
1: जी, तो मैं थोड़ा सा, मैं अपने बारे में, अपनी जीवनी के बारे में थोड़ा सा आप सब लोगों को बताना चाहूँगा।
0: जी,
1: तो ये बात है 2005 की, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी और मैं जब पुणे के अंदर गया, तो मेरा जो बहुत ज़्यादा झुकाव है तो वो शनिदेव भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ मेरा एक्चुअली।
0: जी,
1: और मैं शनि भगवान जी की जो है वो पूजा करने लगा रेगुलरली बेसिकली।
0: तो ऐसे अचानक ही, या कोई आपका स्वप्न आया या?
1: नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपने अर्लियर कैरियर एज में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप हमेशा अपने भगवान के सामने थोड़ा हाथ फैलाते हैं। तो बाय चांस ही जो पुणे में एक बहुत ही बढ़िया मंदिर था शनिदेव जी का, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पे प्रार्थना करना स्टार्ट करी हर शनिवार को, और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो पूर्ति होने लगी मेरी। तो मेरे भगवान के प्रति और भी, शनिदेव भगवान के प्रति मेरी और भी आस्था बन गई। और फास्ट फॉरवर्ड उसके बाद में जो है मेरी 2011 में शादी हुई, मेरे को बहुत ही अच्छी धर्मपत्नी मिली।
0: अच्छा।
1: और 2013 के अंदर मेरे पुत्र का, पहले पुत्र का जन्म हुआ, क्योंकि मैं क्योंकि मैं भगवान शनिदेव की पूजा कर रहा था, काफ़ी करता था, हर सैटरडे को वीकली पूजा करता था, तो मैंने अपने पुत्र का नाम भी उनके नाम पर ही रखा, शनै जो होते हैं।
0: अच्छा।
1: पावर ऑफ लॉर्ड शनि।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद 2017 में मेरा दूसरा पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम हमने इवान रखा। और उसके बाद 2018 में है, 18 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ गए एक्चुअली।
0: अच्छा।
1: और मेरी जो है पूजा रेगुलरली जो है चालू ही रही, हर वीकेंड पे मैं पूजा करता था, लेकिन कुछ 2024 के अंदर कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में कि अचानक है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत्र में है सुनने लगा एक्चुअली।
0: अच्छा।
1: मेरे को उसमें बहुत ही ज़्यादा खिंचाव,
0: ऐसे ही अचानक?
1: जी, अचानक हुआ ही है, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब दिन रात है ना उस महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत्रम को सुनने लगा। तो उसने मेरे को कुछ एनर्जी ने ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा यू नो कनेक्ट किया एक्चुअली। और उसके बाद में मुझे पता नहीं क्या ही हुआ, लेकिन लेकिन जो मुझे पता है कि जो मुझे धीरे धीरे बाद में चीज़ समझ में आई जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो अगर आपने सुना हो दश महाविद्या जो हमारी हैं, तो दश महाविद्या के बारे में जस्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं कि ये माँ और जो पुत्र के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाता है एक्चुअली, राइट? तो जैसे जैसे ही यदि आप संकट में हैं, जैसे यदि आपका पुत्र संकट में है या आप, माँ तुरंत आपको बचाने आ जाती है एक्चुअली, राइट? तो जो माँ काली है, जो पहली दश महाविद्या है, वो संकट हरने वाली माँ है। और इसी तरह जो माँ तारा है दूसरे नंबर पे, वो मार्गदर्श दीक्षा देने वाली माँ है, ठीक है?
0: अच्छा।
1: इसी तरह हमारे जो जो तीसरे नंबर पे है षोडशी माँ, जैसे त्रिपुर सुंदरी और श्रीविद्या भी बोलते हैं, फिर भुवनेश्वरी माँ, त्रिपुर भैरवरी माँ, यू नो चिन्मस्तमा माँ, धूमावती माँ, बगुलामुखी माँ, मातंगी माँ, कमला माँ, तो ये एक तरीके से पुत्र जो जब जब आपके ऊपर जो जो माँ का रोल होता है, यू नो आपको मार्गदर्शन देने का, आपको प्रेम देने का, आपका पालन करने का, आपको अनुशासन सिखाने का, आपका अहंकार तोड़ने का, कई बार आप हमारे में भी अहंकार हो जाता है तो, और आपको कई बार दुख होता है दुख में संभालने के लिए, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये जितनी भी दश महाविद्याएं हैं वो हर एक एक प्लैनेट को रूल करती हैं।
0: अच्छा, तो यहाँ मैं थोड़ा टोकूंगी पराग जी, कि जो हम नवरात्रि में माता के नौ रूप को देखते हैं और उनको समझते हैं, तो क्या ये जो दश विद्या आपने बताई है उनसे अलग है?
1: जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे नवरात्र में हम जो देवियों की पूजा करते हैं, जैसे शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटा हैं, कुष्मांडा हैं, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, सिद्धिदात्री हैं बेसिकली, और महागौरी हैं, राइट? तो ये हम लोग नव दुर्गाओं की पूजा करते हैं। तो ये माँ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेज हैं एक्चुअली, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। आई डोंट नो आप सब लोगों को ये पता है कि नहीं पता है कि साल के अंदर चार नवरात्रि आती हैं, ठीक है? दो प्रगट नवरात्रि आती हैं और दो गुप्त नवरात्रि आती हैं। जो प्रगट नवरात्रि होती है वो मार्च अप्रैल में आती है, जो पहली होती है चैत्र नवरात्रा कहलाती है।
0: जी जी।
1: दूसरी होती है गुप्त नवरात्रि, जो आती है आषाढ़, जैसे हम आषाढ़ नवरात्रि भी बोलते हैं, जो जून जुलाई में आती है, जो गुप्त नवरात्रि होती है।
0: जी।
1: तीसरी जो आने वाली है वो है आश्विन नवरात्रि, जो सेप्टेम्बर अक्टूबर में आती है, जो प्रगट यू नो कहलाती है, प्रगट नवरात्रा कहलाती है। और उसके बाद में जनवरी और फरवरी में आती है आपकी एक माघ नवरात्रि, जैसे गुप्त
0: तो
1: नवरात्रि।
0: ये उसमें दश विद्या नहीं लागू होती है?
1: तो मैं आपको अच्छा, आप बताना चाह रहा हूँ कि जो जो आपकी प्रगट नवरात्रा होती है उसमें नव दुर्गा की जो है स्तुति की जाती है।
0: अच्छा।
1: और जो जो आपकी गुप्त नवरात्राएं होती हैं उसमें वहां पे आपकी दश महाविद्याओं की पूजा की जाती
0: है। अच्छा, अच्छा।
1: तो ये ऐसे इसका पूरा का पूरा जो है रिलेशनशिप है। तो मेरी मैं जस्ट आई विल कंटिन्यू माई यू नो जर्नी। तो हुआ ये कि फिर मेरे को पता पड़ा कि जो जो शनि भगवान है उनका जो रूलिंग देवी है दश महाविद्या में वो माँ काली है एक्चुअली।
0: अच्छा।
1: राइट, सो दैट्स हाउ इट गॉट कनेक्टेड। और उसके बाद में मैंने, और मैं उसी समय में बिटवीन द पीरियड ऑफ जब मैं दुबई में था 2013-2014 के करीब, तो मैं कायस्थ वंश इंटरनेशनल से कनेक्ट हुआ डॉक्टर दिनेश निगम जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कन्वीनर हैं बेसिकली, फाउंडर हैं, और उनके मार्गदर्शन में मैं वहाँ पे जो है वहाँ पे वॉलंटियर वर्क भी करने लगा एक्चुअली दुबई। अच्छा। में, और मेरे को बहुत ही मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग में जाके भी डिफरेंट अपनी जो कायस फैमिली उनसे मिलता रहा। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक तो कनेक्ट हो गया था कि बिटवीन यू नो शनि भगवान और जो है माँ काली, लेकिन मेरा एक जो कनेक्शन था जो हमारा चित्रगुप्त भगवान जी हैं, तो मेरा उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया था। मैं सोचा था कि इसका क्या कनेक्शन है, और मैं आर्किटेक्ट हूँ एक्चुअली, तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ कनेक्शन इन एवरीथिंग। सो हुआ ये कि जब मैंने माँ काली के उसमें आया, तो सबसे पहला ये था कि मैं माँ काली की जो है एक मूर्ति स्थापित करना चाहता था अपने घर में। तो जनरली सब लोग बहुत डरते हैं, राइट, माँ काली का जिस तरह से स्वरूप है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च किया कि मैं किस तरह की माँ काली का जो स्वरूप है उसको है ना मैं अपने घर के अंदर रख सकता हूँ, राइट? तो आपको बता दूँ माँ काली के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, 10 स्वरूप हैं, जैसे चिंतामणि काली होती है, स्पर्शमणि काली होती है, संतिदापरता काली होती है, सिद्धि काली होती है, दक्षिणा काली होती है, कामकला काली होती है, हंस काली, गुहा काली, शमशान काली, भद्र काली। तो इसमें से जो कुछ रूप हैं उनके वो जो है सौम्य रूप हैं, और कुछ जो हैं उनके उग्र रूप हैं।
0: अच्छा।
1: ठीक है, तो जब आप घर में आप किसी की पूजा करते हैं माँ काली की, तो आपको उनका सौम्य रूप में पूजा करनी चाहिए एक्चुअली, सात्विक रूप से,
0: नहीं करना चाहिए।
1: तो वो जो है तांत्रिकों के लिए होती है बेसिकली। तो मैंने सौम्य रूप जो है उनका आध्याकाली का जो है मैंने अपने घर में रखा, और उसके बाद से मेरे को एक दर से ना जैसे एक बुलेट ट्रेन होती है।
0: अच्छा।
1: उस तरीके से मेरी एक गति स्टार्ट हो गई एक्चुअली,
0: मतलब वो एनर्जी आपको आने लगी,
1: वो एनर्जी मेरे को तुरंत कनेक्ट किया, और यू नो लाइक मैं दिन रात उनकी भक्ति करने लगा एक्चुअली। रात वो टाइम है आई थिंक 2024 से लेकर और आज तक का समय है, मैं अभी आने से पहले भी पूजा करके आया हूँ। तो डेली मैं एक घंटे मैं माँ की पूजा करता हूँ एक्चुअली, माँ के साथ में चित्रगुप्त भगवान और दश महाविद्या और सारे भगवानों की मैं पूजा करता हूँ।
0: चलिए, इतनी बात आपने कही माता की, तो माता का ये गीत भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ा।

0: Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000.
1: Har Ravi Pal suni e Dadpan Hindi Kaikam, 98.5 FM par, subit 9-11 baje tak.
2: Shri Om ki nai respite care seva aapki subhida ke liye tayar hai. Kya aap chuttiyon mein swasthya labh hetu एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा भोजन व संस्कार से आपको आपके परिजनों की देख रेख हो सके जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो हमारी सेवाएं ललौर बाग व वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा आपके घर ही आपकी सेवा डे रेस्पाइट केयर स्वास्थ्य वेलनेस सेल्फ फंडेड केयर डेमेंशिया सपोर्ट ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1-300-908-681 ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश
3: श्रोताओं आज हम पराग श्रीवास्तव जी से बातचीत कर रहे हैं और ये धार्मिक चर्चा है तो श्रोताओं मैं पराग जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं क्योंकि मैं तो खुद श्रीवास्तव हूं तो मुझे पता है कि भगवान चित्रगुप्त जी कौन हैं और भगवान के दरबार में चित्रगुप्त जी का क्या रोल है लेकिन मैं चाहती हूं कि पराग जी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए कि हम कायस्थों के लिए चित्रगुप्त जी का नाम कितना महत्वपूर्ण है और हम क्यों इनकी आराधना करते हैं
4: जी तो ये इतिहास तब से स्टार्ट हुआ जब यमलोक में यमराज जी पूरा कार्यभार संभाल रहे थे लेकिन इतना ज़्यादा कार्य हो गया था कि वो खुद भी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे और उनको किसी सहभागी की आवश्यकता थी तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे किसी न किसी साथी की जरूरत है
3: असिस्टेंट की जरूरत
4: या तो जरूरत है तो आप प्लीज़ थोड़ी मदद करिए तो जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उन्होंने 11,000 वर्ष तक जो है पूजा करी और उन्होंने तपस्या करी और उसके बाद में उनकी जो ब्रह्मा जी की जो काया से है वो उत्पन्न हुए चित्रगुप्त भगवान जी राइट
3: अच्छा, तो तभी इसलिए कायस्थ बोलते
4: तभी उनको कायस्थ भी बोला जाता है बेसिकली
3: क्योंकि काया ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए
4: ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए तो इसलिए उन्हें कायस्थ बोला जाता है और उनका नाम चित्रगुप्त भी पड़ा चित्रगुप्त आगे जाके भी पड़ा तो चित्रगुप्त का मतलब ये होता है दो अर्थ होते हैं कि जो चित्त में गुप्त हो तो अच्छा। भगवान जो चित्रगुप्त हैं वो जो है ब्रह्मा जी के चित्त में गुप्त तरीके से थे तो इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा और दूसरा एक कहा जाता है कि चित्र का मतलब होता है रिकॉर्ड यू नो जो चित्र होता है और रिकॉर्ड होता है और गुप्त है जो गुप्त है आपके एक्चुअली राइट
3: अच्छा।
4: तो वो पूरे के पूरे जो आपके गुप्त रिकॉर्ड्स हैं उनका पूरा दस्तावेज लेखा जोखा अपने पास में रखते
3: अच्छा,
4: हैं
3: कि जो भी हमारे अच्छे या बुरे
4: अच्छे बुरे कर्म हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं तो इसलिए भी उन्हें चित्रगुप्त भगवान कहा जाता है तो चित्रगुप्त भगवान के दो विवाह हुए एक तो हुआ माता इरावती से जो जो थी ब्राह्मण कुल से थी
3: जी।
4: और एक उनका विवाह हुआ माता नंदिनी से जो क्षत्रिय कुल से थी
3: जी।
4: तो जो माता इरावती से जो उनके 8 पुत्र हुए माथुर गौड़ भटनागर सक्सेना अम्बस्ट निगम कर्ण और कुलश्रेष्ठ ये जो 8 पुत्र हुए वो माता इरावती से हुए और जो 4 पुत्र है वो माता नंदिनी से हुए भानु श्रीवास्तव जो आप और हम सब लोग हैं सूर्यध्वज और वाल्मीकि और अस्थाना
3: अच्छा
4: तो बेसिकली टोटल मिला के 12 पुत्र हुए और चित्रगुप्त भगवान के जो पूजा पूरे वर्ल्ड में की जाती है लेकिन स्पेशली भारत में जो है पटना काचीपुरम उज्जैन और अयोध्या यहाँ पे उनके 4 धाम कहे जाते हैं
3: अच्छा
4: जी
3: तो और ये भी बता दूं श्रोतागण ऐड करना चाहूँगी कि दिवाली के तीसरे दिन जो है वो हम एक दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं जितने भी कायस्थ हैं और ऐसा मानते हैं कि चित्रगुप्त जी निरंतर जो है वो हमारा अकाउंट लिखते रहते थे सबके कर्मों को लिखते रहते थे उन्हें कभी भी ब्रेक नहीं मिलता था 2400 घंटा वो लिखते थे और सिर्फ एक वो दिन था दिवाली के तीसरे दिन वो अपनी कलम रखते थे और उसी कारण उसी को सेलिब्रेट हम करते हैं और हम कायस्थ लोग जो हैं वो कहते हैं ना पेन डाउन, तो उस दिन हम कोई भी लिखने पढ़ने का काम नहीं करते हैं और इसे जो है कलम दवात की पूजा के नाम से भी जानते हैं, क्यों सही है ना पराग जी?
4: हाँ, दो चीज़ें हैं इसमें एक्चुअली। चित्र को भगवान जी के दो पर्व बहुत इंपॉर्टेंटली मनाए जाते हैं। एक तो उनका होता है प्रगोट उत्सव, उनका जो वो प्रकट हुए,
3: राइट,
4: तो वो आपकी जो है चैत्र जो मार्च अप्रैल में है जब पूर्णिमा आती है उस दिन मनाया जाता है बेसिकली। और जो दूसरा है जैसे आपने बताया यम द्वितीया के दिन, यू नो दीपावली के भाई दूज के दिन जो है वो उस दिन कलम दिवात की हम लोग पूजा करते हैं और भगवान चित्रगुप्त का ध्यान करते हैं।
3: चलिए, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो पराग जी, ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को भगवान चित्रगुप्त जी का भक्त मानते हैं या माँ काली का, या आपके लिए दोनों की भक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है?
4: जी, तो मैं यहीं पे अपनी जो है स्टोरी कंटिन्यू करना चाहूँगा एक्चुअली। तो क्या हुआ मेरे साथ में, तो हुआ ये कि जब मैं माँ काली की बहुत ज़्यादा आराधना करने लगा तो मैं चारों, जैसे मैंने बताया, चारों नवरात्रा करने लगा जो है नौ नौ दिन बेसिकली। और नवरात्रा में आपको पता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, ठीक ना, अनिवार्य है। तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगा एक्चुअली, राइट। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुर्गा सप्तशती का जब मैं पहली बार अध्ययन कर रहा था, जो प्रथम अध्याय है जहाँ पे महाकाली का वर्णन है, तो दुर्गा सप्तशती को भी ना एक्चुअली तीन चरित्रों में विभाजित किया गया है। जो प्रथम चरित्र है वो महाकाली पे है, और जो दूसरे से चौथा अध्याय है जो द्वितीय चरित्र कहलाता है वो महालक्ष्मी पर आधारित है, और जो तीसरा चरित्र है वो महासरस्वती पर आधारित है। अच्छा। अध्याय पांच से लेकर तेरह तक। और इसे सप्तशती इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 700 श्लोक हैं।
3: अच्छा,
4: ठीक है, इसलिए इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। बेसिकली जो मार्कंडे पुराण है वहाँ पे जो 82 से लेकर 93 तक का जो पेज है, जो अध्याय है, वहीं से दुर्गा सप्तशती को लिया गया है।
3: अच्छा,
4: ठीक है, तो ये हमारे पुराणों से ही,
3: मार्कंडे पुराण। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी।
4: जी, तो हुआ ये कि जब मैं प्रथम अध्याय पढ़ रहा था महाकाली के बारे में, तो वहाँ पे ये चीज थोड़ी सी मुझे पता पड़ी कि जब विष्णु भगवान जी के विष्णु भगवान जी जब योग निद्रा में थे, जब पूरा प्रलय काल चल रहा था बेसिकली, तो उस समय क्या हुआ कि उनके कान के मैल से दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटब।
3: हाँ,
4: ठीक है। अब वो जैसे ही पैदा हुए उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयत्न किया।
3: अच्छा, ठीक
4: है, जो हमारे मतलब दादाजी
3: उस ध्येय से वो पैदा हुए।
4: हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने जो है तुरंत जो है ब्रह्मा जी को मारने का प्रयत्न किया, तो ब्रह्मा जी ने बिकॉज विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी जो है योग निद्रा जो है योग माया है उसका उन्होंने ना बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी और पूजा अर्चना करी, तो उससे फिर है महाकाली उत्पन्न हुई। तो जैसे ही महाकाली उत्पन्न हुई तो तुरंत जो है विष्णु भगवान भी जो है योग निद्रा से जग गए बेसिकली, और उन्होंने फिर शुंभ और निशुंभ का मधु कैटब का उन्होंने संहार किया बेसिकली।
3: अच्छा।
4: राइट, तो इसकी वजह से हमारे परम पूजनीय दादाजी जो है जिनसे हमारे चित्र को भगवान आए जो ब्रह्मा जी हैं उनकी उन्होंने रक्षा की थी।
3: अच्छा,
4: ठीक है,
3: जी।
4: तो ब्रह्मा जी ने उस चीज के लिए जैसे ही चित्र को भगवान प्रकट हुए उस समय ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त भगवान को बोला कि तुम्हारा वास नगरकोट में होगा और तुम चंडी के उपासक हो गए। चंडी मतलब महाकाली के उपासक हो गए बेसिकली। ठीक है, तो नगरकोट जो आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा का क्षेत्र है बेसिकली, तो वहाँ पे आज भी देखेंगे तो चंडी माता का मंदिर है वहाँ पे। अच्छा। वो है ना वन ऑफ द शक्तिपीठ भी है हमारे 51 शक्तिपीठ में। तो फिर तो ऐसे इस तरीके से जो है काली माता जो है हमारी चंडी माता जो है वो भगवान चित्रगुप्त से एसोसिएटेड हुई, और भगवान चित्रगुप्त जी को जो अष्ट सिद्धियां मिली वो उन्होंने जो है उन्होंने पूजा की थी जो है षोडशी और त्रिपुसुंदरी माता की।
3: जी,
4: ठीक है, और वहाँ से पूजा करने के बाद में उन्हें असिद्धि प्राप्त हुई, उसे श्री विद्या भी बोलते हैं। अच्छा। और ऐसा बोला जाता है कि जो श्रीवास्तव नाम पड़ा
3: जी
4: वो श्री विद्या का अनुसरण करते थे हमारे पूर्वज जो श्रीवास्तव थे, इस वजह से उन्हें का नाम भी श्रीवास्तव पड़ा।
3: क्या बात है, देखिए, आई फील वेरी इम्पोर्टेंट ना कि मतलब कुछ रोल हमारा भी धर्म में रहा है इम्पोर्टेंट।
4: जी, तो इस तरीके से सारे डॉट मेरे कनेक्ट हो गए।
3: अच्छा, कि तो ये जो भी आपको जानकारी है, ये रिसर्च आपने किया, ये कैसे मतलब इतना आपको समय मिला और इतना पढ़े या अब मैं आपसे पूछने वाली थी 51 शक्तिपीठ के बारे में लेकिन चूंकि सवाल हमारे पास ज्यादा है इसको अगली चर्चा के लिए छोड़ते हैं तो हां आप अपनी कहानी जारी रखिए
4: हां तो यही है कि जैसा आपने शुरुआत की थी और हम लोग बात भी कर रहे थे कि कई बार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता ये जो है भगवान है और जो माता है वही आपको राह दिखाती हैं बेसिकली और सीरियसली हमारे हाथ में कुछ नहीं है मतलब सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता रहता है तो उसके बाद में मैंने भारत धर्म एकेडमी की नींव रखी एक्चुअली और
3: ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में
4: ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मैंने नींव रखी 2025 के अंदर जनवरी के अंदर और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने उसकी नींव रखी मेरे जितने भी मतलब जिसके जितने भी अप्रूवल थे वो तुरंत के तुरंत अप्रूवल आ गए जो ACNC से रजिस्ट्रेशन होता है नॉट फॉर प्रॉफिट का वो तुरंत के तुरंत आ गए जैसे सब कुछ मैंने काफ़ी लोगों से बात की उन्होंने यही बताया कि इतना इजी होता नहीं है कि इतना अप्रूवल मिलना और रजिस्ट्रेशन होना तो वो सारे के सारे आ गए तो मेन विज़न यही था कि मुझे परमानेंट जो है माता काली का और दश महाविद्या का और भगवान चित्रगुप्त जी का जो है मंदिर स्थापित करना है बेसिकली
3: जी मेरा यही अगला सवाल था कि आपका जो विजन है कि आप माँ काली और चित्रगुप्त जी के मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं तो हाँ इसके बारे में हमें बताइए कि क्या इसमें निर्माण कार्य कैसा चल रहा है क्या इसकी शुरुआत हो गई है किस स्थान पे आप कर रहे हो वगैरह वगैरह
4: जी ये ना थोड़ा सा अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है तो आपको मैं बता दूं कि है ना ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी सिडनी के अंदर ऑलरेडी सिडनी काली टेम्पल ऑलरेडी है सिल्वर वाटर में जो पिछले 16 साल से ऑलरेडी ऑपरेटिंग है तो मेरे विजन कभी भी जो था टेम्पररी जो है प्लेस क्रिएट करने का नहीं था बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन ऑपरेटिंग मेरे को परमानेंट स्पेस यू नो एस्टेब्लिश करना था दैट वाज अ विजन बेसिकली तो काफी बड़ा विजन था तो उसकी स्टार्ट कैसे की जाए राइट तो मेरे दिमाग में हमेशा यू नो ये थिंकिंग थी तो आई ऑलवेज फेल्ट कि यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी बिफोर आस्किंग समथिंग बैक राइट तो इसलिए हमने सोचा और मेरा एक ये विजन था कि मंदिर ही नहीं स्थापित करना है आपको गुरुकुल स्थापित करना है बेसिकली जहां पे एजुकेशन भी हो सके प्लस यू नो हमारा पूजा पाठ भी हो सके दोनों चीजें हो सके बेसिकली तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया जाए विच वी कैन स्टार्ट क्विकली बेसिकली और उसके बाद में वी विल टेक इट टू द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल सो हमने पूरी अपनी वेबसाइट डेवलप करी और सबसे पहले जो है सनातन इंसाइक्लोपीडिया बनाया जहाँ पे करीबन 1500 से जो ऊपर जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमने डाले जहाँ पे लोग आके फ्री में पढ़ सकते हैं बेसिकली और साथ में ही पंचांग ज्योतिष और करीबन 250,000 टेम्पल्स की इन्फॉर्मेशन और करीबन 25,000 वीडियो ब्लॉग्स वो सब हम लोगों ने पूरा डाला
3: तो ये लिंक के बारे में बताइए श्रोतागण कैसे देख सकते हैं इसको?
4: हाँ तो हमारी वेबसाइट का नाम है BDA.AI भारत धर्म अकेडमी .AI सो BDA.AI है और हमने उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है लोग जो टेक्निकल हैं पूरा का पूरा एजेंटिक फ्रेमवर्क बताया तो आप वहाँ पे आस्क महाकाली के नाम से चैट है वहाँ पर आप वहाँ पे सीधे जाके आप पूछ सकते हैं कि आज का मेरा समय कैसे रहेगा या फिर मेरे जैसे मेरे बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं इसका आपको समाधान मेरे को समाधान कैसे मिलेगा तो हमारा जो पूरा का पूरा पीछे जो यू नो ऑर्केस्ट्रेटेड प्लेटफॉर्म है इंजन है वो आपके ज्योतिष शास्त्र से पता करके आपके पूरा ज्योतिष के बारे में पता करके आज के पंचांग के हिसाब से पता करके आपको बहुत ही टेलर्ड जो है आंसर देगा बेसिकली और
3: ये आंसर जो है वो AI दे रहा है या कोई वाकई
4: नहीं, नहीं वो हमने ट्यून इन किया है बहुत स्पेसिफिकली जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं तो आपको इवन सोर्स भी पता पड़ेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कहां से आ रहा है कौन से सोर्स के थ्रू आ रहा है एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हमने टेलर्ड सॉल्यूशन बनाया तो आज आप देख लीजिए पिछले 1.5 साल के अंदर करीबन 300,000 से भी ऊपर जो लोग हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं और फिर हमने अपना YouTube पे भी काफ़ी अपनी इनरिच बढ़ाई एक्चुअली हम लोग 51 शक्ति पीठ और जितने भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग हमारे YouTube चैनल पे भी डालने लगे तो आज हमारे 125,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं यू नो YouTube चैनल पे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई इसकी वजह से बिकॉज मेरे को फिजिकली भी जो है टेम्पल एस्टेब्लिश करना था तो उसकी वजह से मुझे जितनी भी टेम्पल एसोसिएशन से मिलने का मौका मिला जितनी भी काउंसलर से मिनिस्टर से जो यू नो और जितनी भी कम्युनिटी लीडर्स हैं बेसिकली पॉलिटिशियंस हैं और इन सबसे मिलने का मौका मिला और मैं बहुत ही बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराधा पौडवाल जी का और वो महाकाली की बहुत बड़ी भक्त हैं तो वो सबसे पहले आगे आई 2025 के अंदर उन्होंने हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया मैसेज भेजा और यू नो उनका एक ही विज़न है कि जो हमारा विज़न है कि जो है एक टेम्पल एस्टेब्लिश करना है यहाँ पे सिडनी में परमानेंट प्लेस फॉर माता सो
3: दिशा में आप पूरे प्रयत्नशील हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जल्दी से जल्दी हमें मंदिर देखने को मिले चित्रगुप्त जी का भी और माँ काली का भी तो एक मन में सवाल उठता है कि माँ काली का स्वरूप इतना शक्तिशाली है इतना उग्र है तो इसके पीछे क्या कोई आध्यात्मिक संदेश है माँ काली के हाथ में तलवार और गले में मुंडमाला ऐसे प्रतीकों का क्या आध्यात्मिक अर्थ है कुछ थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए
4: जी आप यदि माँ काली की जो मूर्ति है या माँ काली का जो स्वरूप है आप उनको देखें तो उनके खुले हुए बाल हैं तो यू नो वो ये दर्शाता है कि वो मुक्त केशी हैं मतलब वो किसी के बंधन में नहीं है बेसिकली राइट वो समय और काल से भी बहुत ज्यादा परे हैं ठीक है उनके हाथ में मुंड है ठीक है और जो हाथ में लटका हुआ है और उनके हाथ में खप्पर है वो ये चीज़ दिखाती है कि यू नो आपके अंदर यदि अहंकार होगा तो वो यू नो अहंकार को काट देंगी बेसिकली हमारे में कई बार होता है ना कि मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें ठीक है तो इसी चीज़ का उन्होंने संदेश दिया है जो यू नो उनके हाथ में मुंड है बेसिकली और खप्पर है कि आप में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और तीसरा जो उनके गले में जो 50 मुंडमाला है वो एक्चुअली संस्कृत के यू नो 50 अक्षर हैं बेसिकली जिससे पूरी शब्दावली बननी है जिससे पूरे को पूरे मंत्र बने तो वो उसका मूल स्वरूप है
3: 50 मुंडमाल हैं
4: तो वो सारा का सारा जो है ये जितने भी मंत्र बने हैं जितने भी शब्द बने हैं जो भी हम लोग बोलते हैं उसके पीछे जो मूल ऊर्जा है वो माँ काली ही है एक्चुअली
3: बहुत सुंदर बात आपने बताई तो चित्रगुप्त जी के कर्मों के लेखे से और माँ काली शक्ति तथा नकारात्मकता के विनाश से जुड़ी हैं क्या आपको इन दोनों आराध्य शक्तियों के बीच कोई आध्यात्मिक संबंध दिखाई देता है
4: जी जी बिल्कुल देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने आपको पूरी अपनी जर्नी बताई कि भगवान चित्रगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं बेसिकली और माँ काली जो है वो समय से और काल से भी बहुत ज़्यादा परे हैं और काली जी का माता का ये कि आप में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो यदि इसमें संबंध यही है कि दिन रात यदि हम लोग जो डे टू डे हम लोग जो कर्म करते हैं राइट हम लोग उसे यदि भगवान पे अर्पित करके निस्वार्थ भावना से हम लोग बिल्कुल डे टू डे करते रहें ठीक है तो भगवान चित्रगुप्त माँ काली और जितनी भगवान है आपकी उनके ऊपर कृपा आप पर हमेशा रहती रहेगी और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे तो यही संदेश है
3: बहुत सुंदर बात और हम चाहते हैं कि सभी लोग हम लोग जो हैं इसको ध्यान में रख के ही आराधना करें और इस पर काम करें खासकर अपने अहंकार पे तो ज़रूर काम करना चाहिए जी तो बहुत अच्छी चर्चा रही आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए लेकिन अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अगर कोई व्यक्ति चित्रगुप्त जी के कर्म सिद्धांत और माँ काली की शक्ति एवं निर्भयता को अपने जीवन में अपनाना चाहता है तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए
4: जी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान खुद ही जो है दिशा दिखाता है तो मैं एक छोटी सी बात जो मैं आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया अभी जस्ट है ना जस्ट जन्माष्टमी की बात है एक्चुअली राइट तो हुआ ये मेरे साथ में कि जब मैं जन्माष्टमी में हर जन्माष्टमी में सिडनी काली टेम्पल है जो 16 साल से एस्टेब्लिश्ड है मैं वहाँ पर गया एक्चुअली और लिटरली मैं उस दिन से काफ़ी चेंज हो गया मतलब मेरे को बहुत ही बड़ा तो मुझे उस दिन पता पड़ा कि महाकाली का जो टेम्पल है उसे रिलोकेट करना पड़ रहा है बेसिकली क्योंकि बिकॉज जो है जो वहाँ का ओनर है
3: से वहाँ पे था और
4: हाँ वहाँ पे जो ओनर है वो कुछ और करना चाहता है ही हैज़ अ डिफरेंट विजन बेसिकली और अगले दिन ही जन्माष्टमी के अगले दिन ही हमें पूरा को मतलब पूरा को रिलोकेट करना था
3: अच्छा
4: तो मुझे जन्माष्टमी के रोज ही पता पड़ा तो मेरे दिमाग में यह आया कि मैं सब कुछ यू नो परमानेंट प्लेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे टेम्पररी स्पेस है ना यू नो ही नहीं है एक्चुअली राइट तो ऐसा है ना कि आपकी खुद की मार्क पास में मतलब यू नो किराए का घर नहीं है और आप परमानेंट घर बनाने की सोच रहे हैं तो उसने मेरे को काफ़ी इफेक्ट किया अंदर से बेसिकली और मैंने तुरंत ही प्रण लिया फिर मैं अगले दिन मैं उनकी सहायता करने भी आया जो हमारी बंगाली एसोसिएशन है मैं उनकी सहायता करने आया तो यू नो लाइक भगवान आपको हिंट देता रहता है तो जो माँ काली की जो जो प्रतिमा है उसको MMI जो टेम्पल एसोसिएशन है महाराष्ट्र जो टेम्पल एसोसिएशन है उन लोगों ने टेम्पररी 31 जनवरी तक माँ काली की जो प्रतिमा है उसको वहाँ रख रखा है बेसिकली और तब तक कहीं हमारे पास में समय है और जो दूसरी प्रतिमाएँ थी जैसे महालक्ष्मी की
3: जी
4: और यू नो 200 साल पुराने जो हमारे पास में शिला थी यू नो नारायण शिला थी वो मेरे घर पे आ गई एक्चुअली राइट तो काफ़ी सारे तो मेरे को बताया गया कि ये 150 से 200 साल पुरानी शिलाएं हैं और ये है और महालक्ष्मी
3: है वरदान है
4: तो मेरे को हमेशा हर समय हिंट मिलते रहे हैं कि यू नो लाइक मुझे क्या करना है नेक्स्ट राइट तो मैं तुरंत लग गया हेल्प करने में और यू नो माता की कृपा से चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हैं लेकिन आप देखिए जो मैंने पिछले 1.5-2 साल में इतने कनेक्शन बनाए राइट यू नो जितने भी टेंपल एसोसिएशंस हैं काउंसलर्स हैं काउंसलेट्स हैं उन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी तो देखिए कहाँ की चीज कहाँ काम आती है
3: बिल्कुल
4: है ना तो वो उन्होंने मदद करी और हमारे पास में हम लोग वी आर ट्राइंग टू यू नो वी हैव सम प्लेसेस इन आवर माइंड वी आर ट्राइंग टू यू नो गेट इट कन्वर्टेड बेसिकली तो धीरे धीरे जो है विजन की तरफ ही आगे हम लोग अपनी विजन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं टेम्पररी एस्टेब्लिश करने के बाद परमानेंट तो आपने जब मेरे से पूछा तो आप बस भगवान पे छोड़ दीजिए एक्चुअली राइट आपको भगवान राह दिखाता रहेगा आप क्वेश्चन मत करिए उसके बारे में कि ये क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है बस आप बढ़ते जाइए आगे ठीक है और कुछ भगवान ने आपके बारे में डिसाइड किया है ठीक है और हमारा जो आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई है मेरे साथ में जैसे हमारा जो ज्योतिष इंजन है जो BDA.AI पर है ना तो जब मैंने उसमें सब कुछ डाला तो पता पड़ा उसमें भी उसने बहुत क्लियरली मेरे को बताया ये सब चीज़ बाद में हो रही है कि मेरी इष्ट देवी जो है माँ काली हैं
3: अच्छा
4: ठीक है तो ये जो लोग बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है सनातन धर्म मिथ्या है एंड ऑल दिस थिंग आप प्लीज यू नो मेरी खुद की एक कहानी है और यू नो इतना एक्यूरेटली सब चीजें मेरे संग में काम करिए
3: और आपकी कहानी बहुत बिलीवेबल है पराग जी और माँ काली या हर भगवान जो है हमेशा हमें गाइड करते हैं
4: बिल्कुल
3: लेकिन हम उस आवाज को सुनते नहीं या इग्नोर
4: कर देते हैं करते हैं एक्चुअली हमारा अहंकार बीच में आ जाता है
3: जी
4: तो हम लोग सोचते हैं कि अरे यू नो लाइक किसी ने आपको इन्वॉल्व किया है तो मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए या फिर लाइक आपका बहुत सारे अहंकार बीच में आ जाता है तो यदि आप उसको काट के आप धर्म के तरफ आगे बढ़ते रहे तो वो ही आपको खुद ही क्योंकि ये इस जन्म का तो है नहीं
3: जी, जी।
4: राइट ये आपके जन्मों जन्मों से चीजें चलती आ रही हैं राइट आपके पूर्व जन्म में भी जो इष्ट देव या देवी थे वही हैं जो इस जन्म
3: संस्कार चले आते हैं और माता पिता के भी संस्कार होते हैं लेकिन होता ये है कि हम हर चीज़ क्वेश्चन करते हैं पहली बात कि हम अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं
4: जी
3: किसी भी सेवा में अगर सेवा तो किसी सेवा भाव से होनी चाहिए ना किसी स्वार्थ से नहीं होना चाहिए लेकिन मैं जो पैटर्न देखती हूँ हमेशा लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं कि भाई हमारा नाम पहले
4: मेरा, हाँ, मेरा क्या है यस, बिल्कुल।
3: है ना मेरा नाम पहले हो बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं इसलिए जो भगवान का संदेश है वो हमें डायरेक्ट मिल नहीं पाता है
4: जी।
3: तो जो आप कह रहे हैं श्रोतागण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप जुड़ें उनसे बिना किसी वजह
4: और मदद करते रहिए राइट अभी हमारा जो है बी क्रॉफ्ट के अंदर जो है अक्टूबर के अंदर नवरात्रि के दिन 17 जो अक्टूबर है वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होने वाला है दुर्गा माता का एक्चुअली राइट जो हम लोग इसी पर्पस से कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है सिडनी काली टेम्पल को टेम्पररी एस्टेब्लिश कर सकें ठीक है तो आप आइए प्लीज आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते
3: हैं तो उसका डिटेल बता दीजिए आप कि क्या एड्रेस है
4: बी क्रॉफ्ट कम्युनिटी सेंटर में होने वाला है और ये है 17 अक्टूबर को है और दुर्गा माता की हम वहाँ आराधना करेंगे
3: समय
4: समय जो है सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक है रात को
3: जी।
4: और जो पूजा है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी और 7 बजे हम लोग कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं तो काफी ये जो एसोसिएशंस हैं वो काफी हेल्प उन्होंने भी काफी हेल्प करी जो है सांस्कृतिक और कल्चरल जो नृत्य हैं वो सब वहां पे परफॉर्म होंगे और मेन विजन ये है कि हम लोग माता के लिए कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें ताकि बिकॉज़ आपको मालूम है यहां पे चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं यहां पे मेनली $50,000 पर ईयर का हमें देना ही है एक्चुअली राइट टेंपरेरी होम के लिए भी राइट तो वो हमारा रहेगा मेन और हम लोग साल में ये दो इवेंट मेनली करते हैं दुर्गा माता का और काली माता की पूजा है उसके अलावा जन्माष्टमी भी रहती है तो थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा हम लोग करते रहते हैं और मेन विजन ये है कि सब लोग सामने आएंगे सब लोग इकट्ठा होके चलेंगे
3: जी
4: और सब लोग साथ में मिलके करेंगे तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है
3: हां और ये काम पूरा हो जाए तो धन्यवाद पराग जी यहां आने के लिए और इतनी गूढ़ जानकारी आपने दी काली माता के लिए और चित्रगुप्त भगवान जी के लिए तो श्रोतागण के कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें ये सब बातें सुन के आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं मंदिर निर्माण के लिए चित्रगुप्त जी और काली माता के लिए और जुड़े रहिए जो भी मंदिर कार्य में या जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं आप हमारे श्रोताओं को उससे अवगत कराते रहिए
4: बिल्कुल
3: और चर्चा जारी रखेंगे
4: धन्यवाद
3: धन्यवाद बहुत-बहुत नमस्कार धन्यवाद
4: थैंक यू

0: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
1: Aap hamari samajik suchnay aur sponsors ke sandesh hamari website dapanradio.org.au par dekh sakte hain.
2: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
3: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
4: श्रोताओं, पहेली अभी भी जारी है। आप लोग जो आज की पहेली है, गणेश जी के पसंद की मिठाई कौन सी है, और इसका उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम में, अगर आप मेंबर हैं तो आप उस पर भेज सकते हैं, और अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं तो आप हमारे फ़ोन पे एसएमएस करके भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0468-467-196।
5: सुनील जी, एक बात ऐड करना चाहती हूँ पहेली से के संबंधित। पहले तो ये सूचना पढ़ दूँ मैं कि कुटुंब परिवार जो है वो कुटुंब उत्सव मना रहे हैं, जो कि आज के ही दिन है। इसका नाम है कुटुंब उत्सव मल्टीकल्चरल फेस्टिवल 2026। तो 20 सितंबर आज के दिन मनाया जा रहा है, और ये इसका स्थान है 5 बजे से 8 बजे तक मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम हार्वी लो पेवेलियन कासल हिल शो ग्राउंड में इसे मना रहे हैं। इसके लिए अगर आपको टिकट चाहिए या रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप राजगर्ग से संपर्क कर सकते हैं, या फिर www.kutumb.org.au पे जा सकते हैं। इसका फ्लायर जो है हमने अपने ग्रुप में भी डाला हुआ है दर्पण फोरम में, जहां से आप और जानकारी ले सकते हैं। तो कुटुंब उत्सव से राजगर्ग जी ने हमें बताया कि वो 2 फ्री टिकट देना चाहते हैं। तो हमारी पहेली के लिए, पहेली आपको पता ही है कि गणेश जी का प्रिय मिठाई क्या है उनकी। अगर इसका आप उत्तर देते हैं तो आपके पास अभी 2 इनाम हैं सुनील जी जीतने के लिए। एक आपने बताया कि
4: जो है, एक मैंने बताया जो ड्रामा है दशारंग, और दूसरा जो है आपने आप दे रही हैं
5: कुटुंब उत्सव। ये टिकटेड इवेंट है, लेकिन इसके 2 फ्री टिकट जो हैं वो हम देंगे।
4: तो अभी एक विनर नहीं, 2 विनर होंगे।
5: 2 विनर हम चूज करेंगे, और ये भी 2 टिकट मिलेंगे जो भी जीतेगा। तो लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाइए और रजिस्टर कीजिए। प्रोग्राम 5 से 8 बजे है, बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम है, जरूर इससे जुड़िए। श्रोताओं, ये भी बताना चाहती थी कि आज जो है हम महेश भट्ट जी की भी बात कर रहे हैं, और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है। और महेश भट्ट को हम सब जानते हैं, उनकी सभी फिल्में जो हैं हम कितनी पसंद करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आज के दिन 20 सितंबर 1948 में महेश भट्ट जी का जन्म हुआ था। ये निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क, जख्म, नाम अलग अलग हैं, कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन महेश भट्ट के सिनेमा में एक चीज़ बार बार दिखाई देती है, वो है इंसान की अंदरूनी दुनिया। उनके जन्मदिन पर आज सभी गीत उन्हीं को समर्पित हैं। जानते हैं कि महेश भट्ट के बारे में कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें जो हर सिनेमा प्रेमी को मालूम नहीं होंगी। इनकी पहली अनोखी बात यह है कि वो हमेशा अपने तकिए के नीचे गणेश जी की एक मूर्ति रखते थे। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई। और ये भी बता दें कि उनका नाम महेश क्यों पड़ा। उनकी माँ जो है वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड से थी, और उनके पिता जो थे वो शिव भक्त थे। तो वो शिव के ही नाम पे उन्होंने महेश नाम रखा इनका, लेकिन छोटे से महेश जी को जो है वो शिव से ज़्यादा गणेश जी पसंद थे, इतना कि वो बचपन में अपने तकिए के नीचे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखकर सोते थे। और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प थी, जो कि मैंने आपको बताया कि वो हमेशा गणेश जी को अपने करीब महसूस करते थे और अपने पिता की तुलना में वो अपनी माँ से ज़्यादा करीब थे। उनके पिता फिल्मकार नाना भाई भट्ट उनके बचपन में उनके साथ नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते थे, बाहर ज़्यादा रहते थे, और शायद यही कारण था कि वो पिता की अनुपस्थिति उनके सिनेमा का एक रीअकरिंग थीम बन गई। उनकी सभी मूवीज़ में आप देखिए पिता से जुड़ी कहानी ज़रूर रहेगी कि पिता जो हैं वो थोड़ा अलग हैं या डिस्टेंस हैं, यानी कि एक बात को जो बच्चा महसूस कर रहा है वो बाद में एक फिल्मकार की भाषा बन गई। दूसरी एक ज़रूरी बात इनके जीवन की ये है कि रिश्तों में टूटन, प्यार, विश्वासघात, अकेलापन और एक महिला का खुद को फिर से खड़ा करना, ये भी उनकी निजी जीवन की कहानी से ही प्रभावित है। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, अपनी निजी ज़िंदगी में भी उन्होंने महसूस किया वो माँ के ज़्यादा करीब थे, माँ ने ही एक तरह से उनको पाला और पिता हमेशा दूर ही रहे। तो स्त्री प्रधान मूवी ये बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, आगे भी हम चर्चा करेंगे अगर समय मिला। तो सुनते हैं एक और महेश भट्ट जी का ही गीत, सुंदर सा।

0: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
1: श्रोताओं, आइए आपको मिलाते हैं हमारे दूसरे अतिथि थे। आज हमारे साथ हैं नंदन मुखरिया जी, जिन्हें बच्चे प्यार से मिस नैन के नाम से जानते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के क्षेत्र में उन्हें 24 वर्षों का शानदार अनुभव है। एक एजुकेटर के रूप में शुरू हुआ उनका सफ़र आज पैशन, पर्पस और बच्चों के प्रति समर्पण की पहचान बन चुका है। आज वो अपना अर्ली चाइल्डहुड सेंटर चला रही हैं, जहां बच्चों और परिवारों के साथ उनका गहरा जुड़ाव है। हाल में ही उन्हें प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। उनके 24 वर्षों की मेहनत और समर्पण को एक ख़ास पहचान दी है। नंदन जी, दर्पण हिंदी रेडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला और टोटली हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं श्रोतागण, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन।
2: थैंक यू ऋचा जी एंड सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया।
1: तो सबसे पहले अपने बारे में श्रोताओं को बताइए, भारत में आप कहाँ से हैं, कब आना हुआ ऑस्ट्रेलिया?
2: उसके पहले मैं गणपति जी के लिए
1: जी जी श्रोताओं ये मैं
2: बोलना चाहूँगी
1: जी, मैं बताना भूल गई कि नैन जी बहुत ही सुंदर गाती हैं, बहुत मधुर आवाज़ है, तो क्यों ना शुरुआत उसी से हो।
2: श्लोक बोलना चाहूँगी
1: जी,
2: वक्र

गम वाचा सिद्धाय नमः, गम अमोघ सिद्धाय नमः, गम हिरंबाय नमः, गम धरणीधराय नमः, गम चिंतामणे नमः, गम नंदनाय नमः, गम शिवप्रसादाय नमः, गम सुमंगलाय नमः, गम महागणेशाय नमः, गम लक्ष्मीप्रदाय नमः, गम आशापूर्काय नमः, गम अविताय नमः, गम वरदाय नमः, गम बीजाय नमः, गम मंत्राय

0: हाँ गणपति बप्पा
1: मोरिया। बहुत ही सुंदर बात और बहुत अच्छे से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की। तो चलिए अब अपने आपको मिलाइए श्रोतागण से, बताइए भारत में आप कहाँ से हैं।
0: हाँ हाँ ऋचा जी, मेरा नाम नंदन मुखरिया है। जैसा आपने पहले बताया कि बच्चे मुझे प्यार से नैन कहते हैं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ।
1: जी
0: मध्य प्रदेश के पास भोपाल के पास एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है हरदा। वो हरदा से मैं बिलोंग करती हूँ
1: जी
0: और 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली चाइल्डहुड ने मुझे चुना है। जैसे बोलते हैं ना, मुझे शुरू से ही बच्चों से काफ़ी प्यार था।
1: जी
0: और कहते हैं जाकी बही रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन
1: देखी
0: तैसी।
1: तय कैसी।
0: तो भगवान ने फिर मुझे रास्ता दिखाया, तो मैंने अपनी जर्नी एज ए एजुकेटर चूज़ की। आपको पता ही है कि कितनी कठिनाइयाँ आती हैं,
1: जी
0: कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बट मेरे पास एक जुनून था, एक पैशन था अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए और बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए।
1: जी
0: मैं भगवान ने मुझे मौका दिया और मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस तरफ अपना कदम बढ़ाया। और आज मैं जहाँ पे भी हूँ, वहाँ मेरे साथ मेरे बच्चों की ब्लेसिंग्स हैं और मेरी ईमानदारी और मेरा हार्डवर्क।
1: तो आप अपने आप को एक बिजनेस वुमेन मानती हैं या एक एजुकेटर मानती हैं।
0: मैंने कभी, इवन दो हमारा सेंटर है क्वेकर सिल में, उसका नाम है कडल्स प्री स्कूल एंड मॉन्टेसरी, वो बिजनेस में काफ़ी सालों से चला रही हूँ, पर मैंने कभी उसको बिजनेस की दृष्टि से नहीं देखा।
1: जी
0: मैंने उसको हमेशा देखा कि मैं यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है बच्चों के साथ,
1: जी
0: उनको सिखाने को मिलता है, और ये मेरा एक और उनके साथ एक खूबसूरत रिश्ते बनाने को मिलता है। तो यह मेरा एक पैशन और पर्पस है जिसको मैं बहुत खूबसूरती के साथ हर दिन जीती हूँ।
1: जी
0: तो मैंने उसको बिजनेस की दृष्टि से तो कभी देखा ही नहीं है।
1: तो
0: आज
1: आप
0: भी मुझे
1: इंजॉय करती हैं जो
0: बहुत
1: आप
0: इंजॉय।
1: करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। तो ये ब्लेसिंग है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं और आप वर्क पे जाते हैं और पूरा दिन अगर आप इंजॉय करते हैं अपने वर्क को, तो ये
0: हाँ
1: बहुत बड़ी बात है। तो ये बताइए नैन कि आप रोज़ अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों से मिलती हैं। आपके अनुभव में इन बच्चों में आपको कौन सी समानताएं दिखाई देती हैं जो सभी बच्चों को एक दूसरे से जोड़ती हैं? और क्या कोई ऐसा कल्चरल डिफरेंस है जो आपको ख़ास तौर पर इंटरेस्टिंग लगता है?
0: देखो, क्वेकर सिल एरिया में मल्टीकल्चरलिज्म तो है, वहाँ पे सब डिफरेंट कल्चर के बच्चे आते हैं।
1: जी
0: पर बच्चे तो जैसे बोलते हैं कि भगवान का रूप होते हैं, दे जस्ट रिमेम्बर ओनली वन लैंग्वेज, लव।
1: जी
0: तो उनको सिर्फ प्यार की एक परिभाषा पता है, बाकी उनको और उनको किसी चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। बट एज ए एजुकेटर और एज ए इंचार्ज मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूं। हर दिन मीनिंगफुल होना चाहिए बच्चों के लिए कि दे लुक फॉरवर्ड टू कम एट द सेंटर।
1: जी
0: तो मैं मल्टीकल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ, पेरेंट्स से एडवाइस लेती हूँ कि व्हाट दे वांट टू डू, हम आपके बच्चे को क्या सिखाएं और दूसरे कल्चर को बच्चे को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए।
1: जी बहुत बड़ी बात।
0: हाँ, मल्टीकल्चरल फूड, कई बार तो मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ सब बच्चों के लिए, और
1: जी
0: डिफरेंट कल्चर का फूड, डिफरेंट स्टेट्स के फूड, जैसे इंडिया के भी बच्चे हैं तो वो फूड प्रिपरेशन भी सेंटर में होती है। और उसमें सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है।
1: अच्छा
0: सो बच्चे सीख रहे हैं वहाँ पे कि हम सब अलग होके भी एक हैं, सारा
1: हाँ
0: कल्चर और सब कुछ हम यहाँ पे सीख रहे हैं, और एक दूसरे कल्चर का कैसे रिस्पेक्ट करना।
1: वही मैं सोचती हूँ। देखिए बड़े हो के हम एडल्ट जो हैं इतने डिफरेंसेस हो जाते हैं। इवन भारतीय कम्युनिटी में ही देखिए
0: हाँ
1: बहुत डिफरेंस है कि हमारा ये खाना नहीं है, हम ये नहीं ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे नहीं दिखाई
0: नहीं
1: देता है।
0: दिखता
1: जस्ट
0: है।
1: आप फूड की ही बात करें या पूजा पाठ हमारा है, सब लोग एक समान दृष्टि से
0: नहीं
1: नहीं
0: देखते हैं।
1: देखते हैं या अपनाते हैं। तो आप जब अपने सेंटर में बच्चों को देखती हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड लेके आते हैं, डिफरेंट संस्कार लेके आते हैं, तो उन सबको आप कैसे जोड़ पाती हैं?
0: अब उनको यही है कि देखो एक एक तो ये है कि हम मेरी जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी टीम के साथ हमारा प्रोग्राम ऐसा होता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए
1: जी
0: तो उस उसमें जैसे हम ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे ये नहीं देखते कि ये ग्रैंड माँ किस कंट्री की है
1: अच्छा।
0: और ये ग्रैंड माँ कौन सी लैंग्वेज बोलती है दे जस्ट हु डजंट हैव ग्रैंड माज देयर वो दूसरी ग्रैंड माँ के पास गले लगा के उनके पास बैठते हैं
1: कितनी अच्छी
0: तो इज सो ब्यूटीफुल फिर वो ग्रैंड माँ अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करती हैं फिर दो चिल्ड्रन अपने घर जाके वो अपने एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं और फिर जब मेरे को उनसे फीडबैक मिलते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कई बार एक चीज़ और ये अच्छी है कि पेरेंट्स इतने बिजी हैं they don't have that much time unke paas nahi hota hai ki wo sare festival us hisab se celebrate kare to wo humse request kar lete hain ki aap apne school mein celebrate kar lo
1: ji
0: to school mein main puri koshish karti hu ki har culture ka har uska samman karte hue main wo program organize karu aur usme sare sab logon ko involve karu aur wo hamesha successful hota hai it's such a beautiful thing to do
1: aur usse bacche seekhte bhi hai na bahut seekhte hai ki culture ko kaise respect kare
0: they are learning languages from each other
1: acha
0: ha ha kya bacche yadi kabhi aate hain aur jaise koi indian community ke bacche hain aur abhi jaise ganpati ji ka mahotsav chal raha hai to dekha main they sing some ganpati vandana so dusre bacche aake unse sunte hain
1: अरे वाह
0: और वो कई बार कहानी सुनाते हैं कि उनकी कहानी ऐसी थी तो उनका मन इतना प्योर होता है कि दे डोंट सी एनी डिफरेंस वो बहुत इंटरेस्ट लेके और उन बच्चों के साथ सुनते हैं
1: आपको बताऊं कि आप बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हैं कोई पॉलिटिक्स नहीं है उसमें
0: आई एम सो ब्लेस्ड पूरा दिन ऐसे निकलता है जैसी एक प्रेयर हो शाम को जब सोने जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है जब भगवान को पूरा दिन समर्पित करते हैं क्योंकि उसमें सारे कर्म मेरे जो भी मैंने बोला है वो सब तुमको अर्पण क्योंकि बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो उनके साथ कोई चालबाजी नहीं
1: आपको भगवान स्वरूप ही होते हैं
0: भगवान झूठ बोलने की जरूरत नहीं है यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ जो आप हो उनके साथ नाच लो गा लो और तब बहुत अच्छा लगता है जब वो आके मुझसे कहते हैं कि मिस नैन आई लव यू मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा अवार्ड तो कोई हो ही नहीं सकता लाइफ में
1: बहुत ही सुंदर बात आपने कही तो ये बताइए कि आज के माता पिता के लिए आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगी खासकर छोटे बच्चों के इमोशनल सोशल और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
0: देखो माता पिता को वैसे तो मैं ये बोलूँगी कि अगर वो चाइल्ड केयर चूज़ करते हैं अपने बच्चे के लिए विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हर पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो रेटिंग देखें सेंटर की
1: अच्छा
0: जो रेटिंग हमको एक्रेडिटेशन जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से रेटिंग मिलती है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है
1: अच्छा
0: सिर्फ फैसिलिटी और जो चमकदार चीज़ें हैं वो सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए दूसरा जाके ये देखें कि इंटरेक्शन कैसा है बच्चों के साथ में बच्चों के चेहरे देख के आप पहचान जाते हो कि ये सेंटर का एनवायरनमेंट कैसा है
1: जी
0: तो वो चीज़ें देखनी चाहिए उसके बाद ये है कि थोड़ा बहुत वो प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ सकते हैं बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लविंग एनवायरनमेंट हो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो और बच्चों की सेफ्टी
1: हाँ
0: सेफ और
1: तो ये तो आपने बताया कि कैसे एक अच्छा सेंटर हम ढूंढ सकते हैं लेकिन जैसे बच्चों के साथ अगर घर पे हैं तो कैसे माता पिता हेल्प करें कि बच्चों का इमोशनल सोशल और कैसे उनको अच्छे से डेवलप करें ना कि वो एक खुश मिजाज बच्चे बने
0: सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने ये देखी है कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनको काइंड ऑफ डिले दे आर हैविंग बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम
1: जी
0: मेरी पेरेंट्स से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आई नो कि अपन सब बिजी हैं पर आप अगर आधा घंटा भी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो दैट इज़ मोर देन इनफ सबको सभी लोग बिजी हैं पर बच्चों के साथ में ये है कि इसकी वजह से जब पेरेंट्स पिकअप करने आते हैं तो वो दे फील गिल्टी वो मेरा ऑब्जर्वेशन है
1: अच्छा।
0: कि कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो गिल्ट उनके अंदर होती है कि ये बच्चे को हम इतनी देर छोड़ के गए तो जो चाहिए वो हम दे दो वो बच्चे को
1: जी।
0: वो ठीक नहीं है क्योंकि वो बच्चे उससे इमोशनली आप उसको और वीक करते जा रहे हो
1: अच्छा
0: तो मेरा ये है कि बच्चों को एक तो टाइम दो स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए उसकी वजह से उनके डेवलपमेंटल डिले हो रहे हैं दूसरी बात हाँ बच्चों के साथ थोड़ा फर्म होना भी बहुत जरूरी है उनको बताना भी बहुत जरूरी है कि क्या सही क्या गलत है क्योंकि जो वो चाहिए वो हर इच्छा आप उनकी पूरी करते जाओगे सो दे नॉट गोना लर्न एनीथिंग तो ये चीज मैंने देखी है क्योंकि उनका बिहेवियर हमारे साथ अलग होता है
1: हाँ।
0: जब पेरेंट्स आते हैं उनके साथ अलग होता है क्योंकि पेरेंट्स जो वो कहते हैं वो करने को तैयार रहते हैं ना हाँ, उस टाइम स्पॉइल कर देते हैं तो वो क्या है कि वो उनके डेवलपमेंटल उसमें डिले बहुत होता है इसकी वजह से बच्चों
1: जी,
0: में
1: जी।
0: तो और स्क्रीन टाइम ये तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी ऋचा जी और आप भी समय समय पे बताया कीजिए कि प्लीज बच्चों को मोबाइल देना बंद कीजिए
1: जी
0: पहले स्कूल में हमारे दो बच्चे आते थे जो स्पेशल नीड्स होते थे अब हर साल स्कूल में मतलब 5 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तरह की डिले है
1: तो ये बताइए कि छोटे बच्चों की शुरुआती वर्ष उनके व्यक्तित्व और भविष्य के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं इस उम्र में बच्चों के विकास के किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए
0: देखो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट
1: जी
0: अब ज्यादातर पेरेंट्स उनके एकेडमिक उसके ऊपर फोकस करते हैं विच इज नॉट राइट सोशल इमोशनल और फिजिकल कॉग्निटिव वेलबींग सभी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है
1: अच्छा।
0: इन सब चीज़ों का जब भी कभी कोई पेरेंट्स एनरोल करने आता है बच्चों को और मेरे से बोलते हैं कि हमारा बच्चा ABCD लिखेगा कि नहीं तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि ये एक पार्ट है बच्चे की लर्निंग का बट प्लीज लेट हिम लेट उसको बच्चे को फोकस करने दो उसके कॉन्फिडेंस पे
1: अच्छा
0: हाउ वी ही कैन स्टैंड अप एंड टॉक अमंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन वो बच्चों में बड़ा बच्चे लिख लेते हैं 100 तक
1: अच्छा।
0: बट जब कभी अपन उनसे बोलो कि तुम खड़े हो के एक पोएम गा दो तो वो पीछे चाके छुप जाएंगे
1: अच्छा
0: सो ये भी तो डिले है ना एक तरह का सो ये मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहती है कि हमसे ये बोलो कि हम हमारे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं
1: जी
0: अब सिर्फ एकेडमिक नहीं
1: अच्छा।
0: जो कि आजकल पेरेंट्स का बहुत ज्यादा फोकस है एकेडमिक उस पे
1: जी
0: सो मैं ये चाहूंगी कि
1: तो चलिए श्रोतागण एक ब्रेक लेते हैं और ये चर्चा फिर जारी रखते हैं धन्यवाद
2: Contact the Hindi show for sponsorship and phone 0413-385-976.
3: दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413-385-976.

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश
2: श्रोताओं उम्मीद है कि आप पहली में भाग ले रहे हैं एक्चुअली शुरू कर दिया है आपने भाग लेना बहुत अच्छा लग रहा है कि सही जवाब आ रहे हैं अभी तक एक भी गलत जवाब नहीं आया तो कंपटीशन है सुनील जी ये भी बता दें कि आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी राज गर्ग जी लिखते हैं कि गुड बिगनिंग दर्पण रेडियो थैंक्स पराग फॉर द रिलीजियस इन्फॉर्मेशन और जवाब आया है कुछ पहेली का प्रदीप सिन्हा जी लिखते हैं समाचार मधुर भजन ज्ञान वर्धन साक्षात्कार अति मधुर कार्यक्रम चल रहा है यतिंदर गुप्ता जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग ऑफ शेरावाली मंजू जी लिखती हैं वेरी नाइस सॉन्ग राजेश पांडे जी लिखते हैं अति मधुर कार्यक्रम चल रहा है जसप्रीत चोपड़ा जी लिखते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग चित्रगुप्त हिस्ट्री शैलजा जी लिखती हैं पराग जी का धर्म ज्ञान प्रशंसनीय है विशेष रूप से शनि देव व माँ काली जिनका प्रचलित रूप सीमित सही है पराग जी की भक्ति व साधना का अद्भुत पुरस्कार है उन पर प्रभु व माँ की अदृश्य कृपा प्रदीप जी लिखते हैं पराग जी की बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा पराग जी से प्रश्न है कि चित्रगुप्त जी और आकाशिक रिकॉर्ड में कोई कनेक्शन है कि नहीं हेमलता जी लिखती हैं नमस्ते टू दर्पण रेडियो टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स वेरी इंजॉयबल प्रोग्राम पराग जी गेव वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी वेरी गुड सॉन्ग थैंक्स अमिता जी लिखती हैं वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम पराग जी आपका धार्मिक ज्ञान सराहनीय है बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्री चित्रगुप्त जी भगवान के बारे में बताने के लिए थैंक यू रिचा जी और सुनील जी फॉर ब्यूटीफुल प्रोग्राम शैलजा जी फिर लिखती हैं पराग जी का समर्पण संतुलित योजना व संकल्प सनातन संस्कृति व धर्म की अनवरत यात्रा में उनका योगदान भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारे अटूट विश्वास का प्रतीक है पराग जी को शुभकामनाएँ व हार्दिक बधाई भविष्य के बागडोर संभालने के लिए राम दुबे जी लिखते हैं फीलिंग वेरी स्पिरिचुअल लिसनिंग टू पराग जीज गेट प्रोग्राम एब्सोल्युटली कैप्टिवेटिंग और पहली का भी आंसर दिया है
1: वो अभी नहीं बताना है अभी
2: नहीं,
1: जारी
2: वो
1: है।
2: मैं हाँ जारी है मैं पढ़ती जा रही हूँ मैसेज और लीला जी लिखती हैं ऋचा जी महेश भट्ट जी के बारे में आपके शोध को नमन लीला तिवानी जी ने दुर्गा पूजा में सम्मिलित होकर माता का आशीर्वाद लेना हमारा सौभाग्य रहेगा लीला जी ने बताया उसके बाद लीला जी पुनः लिखती हैं नंदन जी आपके विचार बहुत अच्छे लगे शैलजा जी लिखती हैं नंदन जी का साधुवाद विश्व की आगामी पीढ़ी तैयार करने के लिए लीला जी पुनः लिखती हैं नंदन जी शिक्षिका के रूप में आपके विचार बिल्कुल हमारे जैसे हैं अरविंद जी लिखते हैं आज गानों का सिलेक्शन ज़बरदस्त है थैंक्स टू सुनील रिचा हेमलता जी लिखती हैं वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग शैलजा जी लिखती हैं स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग इन द मिडिल चाइल्डहुड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई हियर एंड आई फॉरगेट आई सी एंड आई रिमेंबर आई डू एंड आई अंडरस्टैंड इज़ अ फेमस सेइंग वाइडली शेयर्ड एज अ चाइनीज प्रोवर्ब Children learn from observation. Yatinder ji likhte hain Nandan ji ki child care business and philosophy can be other center as well. To bahut sare shrota aapke jo hai comments aa rahe hain sunke acha lag raha hai ki aap bahut dhyan se sun rahe hain aur enjoy kar rahe hain. Chaliye apni charcha ko aage badhate hain aur Bhavna ji se poochte hain sabse ahem sawal. वो सवाल ये है भावना जी कि आपके सेंटर में बच्चों के लर्निंग और डेवलपमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ या टीचिंग मेथड अपनाए जाते हैं तो ताकि मुझे ये लग रहा है कि जो लोग अदर चाइल्ड केयर सुनते होंगे वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं
3: ये बहुत अच्छा सवाल है ऋचा जी आपका मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ विथ फन और मीनिंगफुल होनी चाहिए हमारा फोकस प्ले बेस्ड लर्निंग पे होता है बच्चों का इंटरेस्ट और उनकी क्यूरियसिटी और फैमिली इनपुट के आधार पर लर्निंग एक्सपीरियंस में प्लान करती हूँ
2: जी।
3: मेरे लिए सबसे अच्छी टीचिंग वही है जिससे बच्चा सीखते हुए ये भूल जाए कि वह पढ़ रहा है। दूसरा ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट थिंग हम हमारे सेंटर में करते हैं कि एज आई मेंशन कि एवरी सिंगल डे शुड बी मीनिंगफुल, सो डांस क्लासेस भी चलती हैं हमारे सेंटर में। दूसरा आर्ट क्लासेस भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ बच्चों के लिए ताकि पेरेंट्स को बहुत सारी जगह नहीं जाना पड़े, ऑल द फैसिलिटीज़ दे कैन गेट इन द वन प्लेस, वो है। और एक हमारा हाईलाइट है कि मैं आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, करती हूँ और कर रही हूँ सिंस 2016। उसका चिल्ड्रंस डायलॉग विथ नेचर, उसमें जो मेरी ग्रैंडमा ने मुझे सिखाया था कि हाउ टू डू आर्ट विथ हल्दी और अपना धनिया पाउडर, बीट रूट का जो जूस है अच्छा। उससे बच्चे नेचुरल चीज़ों से बे लीफ है अच्छा। उनके फ्लावर्स हैं और ऑनियन के पील्स हैं, गार्लिक पील्स हैं अच्छा। उनसे बच्चे कैसे आर्ट बना सकते हैं।
2: तो आप उनको क्रिएटिव बनाने क्रिएटिव के लिए जो है हेल्प करती हैं।
3: हाँ जी हाँ, तो वो बच्चे वो आर्ट बनाते हैं, फिर मैं वो सेंटर में आर्ट एग्जीबिशन लगाती हूँ जिसमें पिछले साल मिशेल रोलैंड भी आई थी
2: अच्छा।
3: और अपने ये ब्लैक टाउन काउंसिल से जो मेयर हैं वो भी आते हैं, दे आल्सो विजिट, और सारी कम्युनिटी जो अराउंड क्वेकर सिल्की है उनको इनवाइट करती हूँ। तो वो एग्जीबिशन मेरे सेंटर में लगती है, उसके बाद हम ये आर्ट ब्लैक टाउन काउंसिल में प्रेजेंट करते हैं
2: अच्छा।
3: तो वहाँ से भी हमारे बच्चों को हर साल अवार्ड मिलता है।
2: तो बताइए छोटे छोटे बच्चे कितना प्राउड महसूस करते होंगे ना कि दे आर डूइंग ग्रेट जॉब।
3: दे उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जब वो उस फोटोग्राफ लेते हैं बच्चों के कि ये पेंटिंग मैंने बनाई। फिर जब वो एग्जीबिशन होती है ना तो वो बच्चों से पूछते हैं कि तुमने ये क्या बनाया है
2: जी।
3: तो उनका इमेजिनेशन इतना बढ़िया होता है कि अपन जब देख के दंग रह जाते हैं कि हमारी सोच में और उनकी सोच में कितना अंतर होता है।
2: उनका विजन जो है
3: उनका विजन टोटली डिफरेंट होता है।
2: बहुत सुंदर बात। तो आप ये बताइए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है तो उसके बारे में हमें बताइए। इतने 24 साल से आप सेवा दे रही हैं और बच्चों के प्रति समर्पित हैं, तो ये किस तरह का आपको अवार्ड मिला और कब मिला?
3: ये तो बहुत खुशी लगती है ऋचा जी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ। ये अवार्ड हमको 2024 से मिल रहा है।
2: अच्छा, लगातार
3: मिल रहा है। 2024 में हमारी टीम के साथ जब हम गए थे वहाँ प्रेजेंट करने तो बेस्ट ड्रेस का अवार्ड मिला था
2: अच्छा।
3: उसकी थीम थी इवनिंग इन पेरिस
2: अच्छा।
3: और सेकेंड टाइम जब हम गए तो हमारा नॉमिनेशन मे बी 21 एरियाज में था
2: अच्छा।
3: आई फील सो प्राउड।
2: क्या नाम है इस अवार्ड का, कौन देता?
3: एक्सीलेंस इन अर्ली चाइल्डहुड अवार्ड। ये कॉम्पिटिशन सिर्फ सिडनी का नहीं है, इट वॉज अमंग NSW न्यू साउथ वेल्स का था। तो उसमें सब वो किसी को पता ही नहीं था कि क्वेकर्सिल कहाँ है, दे वर आस्किंग मी कि वेयर इज क्वेकर्सिल। तब फिर मैं उनको कैसे बताऊं
2: जी
3: कि क्वेकर्सिल कहाँ है, क्योंकि उनको तो ब्लैक टाउन भी नहीं पता है कि कहाँ है ब्लैक टाउन।
2: हाँ,
3: और ब्लैक टाउन के पास
2: वेल्स में तो एक छोटी सी जगह है।
3: तो वो क्या था कि जब हमारे सेंटर का नाम इतनी बार डिस्प्ले हुआ विद द फोटोज, बहुत प्राउड मूवमेंट था। और उसके जब फिर नेक्स्ट,
2: सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आया जब अवार्ड में?
3: पहला विचार था ये
2: खुशी मिलती है, बहुत खुशी,
3: इतनी खुशी कि मैं
2: आपको श्रोताओं में बता दूं, मैं इनका फॉलो करती हूं नैन जी को। इतना सुंदर इनका चाइल्ड केयर, अगर बसंत पंचमी है तो पूरा आपको पूरे पीला ही दिखेगा पूरा इनका चाइल्ड केयर सेंटर। बहुत मेहनत करती हैं और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इनका जो सेंटर है वो अन्य सेंटर से बिल्कुल अलग है और बच्चे बहुत खुश रहते हैं आपके सेंटर में, जो मुझे देखने से लगता है।
3: बहुत खुश रहते हैं बच्चे और बड़ी खुशी होती है जब वो पेरेंट्स पिकअप करने आते हैं और जब मैं उनके हंसता हुआ बच्चा उनको हैंडओवर करती हूँ, तब मैं हमेशा कहती हूँ कि थैंक्स गॉड आज का दिन मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया
2: जी,
3: कि
2: तो मैंने, फिर अब अवार्ड पे आते हैं
3: फिर तो वो अवार्ड में फिर सेकेंड टाइम उनकी थीम थी एनचेंटेड गार्डन। तो हम सबको उस हिसाब से ड्रेसअप करके जाना था
2: जी जी।
3: तो उसमें जो मल्टी कल्चरल प्रोग्राम मैं सेलिब्रेट करती हूँ सेंटर में, उसके लिए हमको मिला था वो अवार्ड। तो वो भी मे बी नॉमिनेशंस मोर देन 25 थे, हमको नहीं पता था कि हमको अवार्ड मिलेगा कि नहीं, ये तो तभी पता चलता है जब वहाँ प्रेजेंट हो, अनाउंस होता है तब। तो नॉमिनेशंस में तो हमारे नाम अनाउंस हुए ही इतनी बार, पर फिर जब अवार्ड मिला तो इट वॉज बहुत प्राउड मोमेंट था, इतने लोगों के सामने, सारे मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, हाँ, और उनकी पूरी पैनल थी जिन्होंने बोला, फिर वहाँ पे जो स्पीच दिया, वो स्पीच की आप क्या करते हो बच्चों के साथ में, हाउ, और जो जो एक्टिविटीज हमने की थी उनके क्राइटेरियाज बहुत टफ होते हैं, दे वोंट गिव यू अवार्ड, उनका ईच सेक्शन में आपको अप्लाई करना हो तो 4,500 वर्ड्स लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर, तो 6 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं
2: जी,
3: तो
2: जी।
3: मेरी पूरी एक महीने की मेहनत थी ऋचा जी,
2: बिल्कुल
3: 1 month 8 hours,
2: बिल्कुल
3: उसके
2: बिल्कुल।
3: बाद फिर थैंक्स गॉड की।
2: तो ये तो पुरस्कार के पीछे देखिए आपकी व्यक्तिगत मेहनत तो है ही, आपकी पूरी टीम की भी मेहनत है, लेकिन परिवार का क्या योगदान है ये बताइए, कैसे घर और सेंटर में आप बैलेंस करती हैं?
3: परिवार का योगदान ऐसा है कि मेरे विदाउट टीम तो आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, पूरा टीम वर्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, पर इसमें वही है ना कि अपनी व्यक्तिगत मेहनत के साथ टीम का योगदान भी मैं इसमें बहुत ज़रूरी है, और इस जर्नी में मेरे परिवार ने साथ दिया, मेरी एक ही बेटी है जो ऑलरेडी मैरिड, तो अब मेरे पास बहुत टाइम ही टाइम है
2: जी
3: है ना। और जहाँ तक मेरे परिवार की और बात करूँ तो मेरे पिताजी का एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे शिक्षा, मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण के जो संस्कार दिए वो आज भी मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मेरे भाइयों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उपलब्धियां हासिल की। हाल ही में मेरे बड़े भाई साहब को हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया, जो हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है
2: जी।
3: मुझे जब मैं अपने परिवार की उपलब्धियों की तरफ देखती हूँ, मुझे महसूस होता है शिक्षा, ज्ञान और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना हमारे संस्कारों का हिस्सा रही है। जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तब पता नहीं था कि कौन सी किस रास्ते पे जाना है
2: जी।
3: क्या बनना है, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, पर अपने संस्कार और जो अपनी परवरिश है वो कहीं ना कहीं अपने को गाइड करते ही हैं
2: जी।
3: और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ, और थैंक्स टू गॉड।
2: बहुत आपको बहुत बहुत बधाई इतने प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए, और आप लगातार ले रहे हो तो ये और भी आपको गौरवान्वित करता होगा। ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मल्टीकल्चरल समाज में अलग अलग संस्कृतियों और बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के साथ काम करना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। आप अपने सेंटर में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को किस तरह से बढ़ावा देती हैं?
3: वही एज मैंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती हूँ, जैसे अभी लास्ट वीक हमने जो नेपाल के बारे में बताया, जो नेपाल में अभी इतना फ्लडिंग हुई, सो उनमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और वो क्यों हुई
2: जी,
3: उसके बारे में बच्चों से बातचीत की कि हमें फ्यूचर के लिए अपनी अर्थ की कैसी देखभाल करनी है
2: जी।
3: फिर उसके हमने श्रीलंका का कल्चर प्रेजेंट किया, क्योंकि हमारी एक टीचर शी इज़ फ्रॉम श्रीलंका, तो पूरा श्रीलंकन कॉस्ट्यूम पहन के आई थी
2: जी।
3: फिर उसने सारा बुद्धिज्म के ऊपर बात की, मेडिटेशन बताया बच्चों को कि मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है। अभी जैसे नवरात्रि आएगी तो मैं सारी मम्मी लोगों को ड्रेस कोड फिक्स कर देती हूँ कि सब लोग रेड लहंगा पहन के आना। फिर जो गुजराती कम्युनिटी है वो डांडिया ऑर्गेनाइज करती है, तो सारे बच्चे फिर डिफरेंट कॉस्ट्यूम में आते हैं और उनका खाना
2: आपकी बातें सुनके तो ऐसा लग रहा है कि काश हम भी अगर बच्चे होते
3: बिल्कुल और यू मोस्ट वेलकम ऋचा जी, एक बार सेंटर में
2: जरूर आएंगे बिल्कुल, हमारी दर्पण टीम पधारेगी और आपके रंग बिरंगे जो है ना सेंटर को एंजॉय करेगी।
3: और एक और चीज कहना चाहूंगी कि बच्चे छोटे होते हैं नेपी पहन के आते हैं
2: जी,
3: बोलना नहीं जानते
2: जी,
3: और जब मैं उनको स्कूल भेजती हूँ दे बिकम कॉन्फिडेंट लर्नर।
2: Wow.
3: तो और उसके बाद कई बार बच्चे ऐसे आते हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं और सम ऑफ देम आर वर्किंग, मैं उनको पहचान भी नहीं पाती
2: जी।
3: और वो स्कूल में आके कहते हैं कि मिस ने डिड यू रिकॉग्नाइज मी,
2: वो अभी भी
3: आते हैं हाँ मेरे से मिलने आते हैं। फिर मैं
2: ये
3: कहती हूँ कि
2: बड़ी उपलब्धि है ना, सबसे बड़ी कमाई यही कमाई है कि आपको जो है हमेशा कोई इंसान याद रखे,
3: तो वो कहते हैं कि हमारी जर्नी यहीं से शुरू हुई
2: जी। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, माता पिता के लिए भी टिप्स आपने दिए, अंत में भावना जी हमारे श्रोताओं को अपने छोटे बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड सेंटर चुन रहे उन्हें सेंटर चुनने समय किस महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें माता पिता को
3: तो मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे पहले तो रेटिंग देखें सेंटर की रेटिंग क्या है एजुकेटर्स की क्वालिफिकेशंस कैसी हैं बच्चों का जो एनवायरनमेंट है जो बच्चे कैसे हैं वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है उसमें ओरिएंटेशन में आके पार्टिसिपेट करें बच्चे को लेके आए तो वो माँ एक ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने कि वो आके उसका दिल बता देता है कि दिस इज़ द प्लेस फॉर माई चाइल्ड
2: जी
3: तो मैं यही कहती हूँ कि माँ से कि ठीक है आप सारी चीज़ें देखो बट जहाँ आपका दिल बोले वहाँ भेजो
2: जी
3: जस्ट ऐसे मत देखिए कि ये सेंटर बहुत सुंदर है तो चलो मैं यहीं अपने बच्चे को भेज देती हूँ बच्चे का खुश और उनकी सेफ्टी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है और उनको भी सेफ और सिक्योर फील करना चाहिए बच्चे को
2: जी
3: और उनकी जहाँ पे वो सिक्योरिटी उनको जब फील होने लगती है वो बिलोंगिंग्स की फीलिंग उनमें आने लगती है तो फिर उनका डेवलपमेंट फैंटास्टिक वे में होता है
2: बहुत सुंदर बात बहुत बहुत धन्यवाद और आगे कोई सपना है आपका या कोई फ्यूचर प्लान है
3: यस ऋचा जी जहाँ तक मेरे सपने की बात है मैं सोचती हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में भी इसी पैशन और इसी डेडिकेशन के साथ मैं अर्ली चाइल्डहुड में काम करना चाहूँगी उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो एक ज़िंदगी में एक ही काम करना चाहते हैं कि मुझे ये बनना है पर मुझे मैं इस छोटी सी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती हूँ तो जैसे? वो सब कुछ मतलब वो मेरा सब कुछ रिलेटेड बच्चों से रिलेटेड ही होगा कि उनके डेवलपमेंट के लिए मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ और मेरे सेंटर को कैसे रिकग्निशन मिल सकती है कभी अपने जीवन में कुछ भी करना है तो हार नहीं माननी है उसके लिए और छोटे छोटे जो जीवन हैं वो एक खूबसूरत याद उनको अपने दिल में बनाना चाहती हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके मन में मेरी याद रहे है ना और मैंने अपने काम को सिर्फ एक नौकरी की तरह तो कभी किया ही नहीं है उसको जिया है मैंने हर दिन और फिर मेरी जर्नी की सबसे बड़ी खूबसूरत ये बात है कि 24 साल के बाद भी मेरे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं और भगवान ने चाहा तो मैं कभी हार नहीं मानूंगी जैसे कहते हैं ना जीत उन्हीं की हुई है जो हार से जी भर कर लड़े हैं हार के भय से डरे वो धाराशाही खड़े हैं हर विजय संकल्प के पद पूछती देखी गई है वही किनारे बचे हैं जो सिंधु को बांधे खड़े हैं
2: वाह वाह वाह कितनी सुंदर बात से आपने ये चर्चा ख़त्म की है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी कि आप आई और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया और ऐसे ही आगे भी आप माता पिता को भी ज्ञान देते रहिए बच्चों को तो ज्ञान दे ही रही हैं लेकिन उन्हें भी जो है ना अच्छी बातें बताती रहिए ताकि वो अच्छे से बच्चों को पाल सकें और शिक्षा दे सकें
3: थैंक यू ऋचा जी
2: धन्यवाद
3: थैंक यू सुनील जी थैंक यू
2: नमस्कार
3: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आई होप आई विल कम अगेन
2: बिल्कुल जुड़े रहिए

0: love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: श्रोताओं, ये हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश है और अभी जब हम लोग पहेली का बहुत सारे हमारे पास उत्तर आए और थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पहेली और बहुत सारे लोग थे तो हम लोगों ने लॉटरी पे दो लोगों का नाम चूज किया है
2: और सबने सही जवाब दिया कि गणेश जी का प्रिय मिष्ठान जो है मोदक।
1: हाँ, तो सभी लोगों का सही उत्तर था और जो है हम चेतन शाह को बधाई हो, आपको मिलता है जो ड्रामा नीडा का जो है दशा का जो है और हम आपको सूचित करेंगे और हेमलता को मिलता है कुटुंब का टिकट्स जो
2: दो फ्री टिकट कुटुंब उत्सव का
1: तो हम आपको सूचित करेंगे कि कैसे आपको टिकट लेना है
2: जी बहुत बहुत बधाई आपको और सभी को धन्यवाद भाग लेने के लिए तो श्रोताओं की उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा महेश भट्ट के गीत भी आपको पसंद आए होंगे महेश भट्ट की कहानी सिर्फ एक फिल्म मेकर की कहानी नहीं है ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी कमज़ोरियों को छिपाया नहीं उन्हें अपनी ताकत बना लिया तो उन्हें उनके जन्मदिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई दर्पण परिवार की ओर से हमें ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे और हमें अपनी टिप्पणियाँ भेजते रहिए ताकि हमें बेहतर प्रोग्राम बनाने में सुविधा मिले और बेहतर प्रोग्राम आपको दे सकें नमस्कार धन्यवाद अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी
3: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
4: Aap sun rahe the Hindi Karyakram. Hame har rivivar suniye subah 9 baje se. Apne vichar bhejiye aaj ke karyakram ke bare mein. Email kijiye feedback@dapanradio.org.au.